0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: आजा प्यार की होड़ी ले।
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
0: दोनों डील कर।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 11 तारीख श्रावण 26 गते मंगलबार चतुर्दशी तिथि घण्टा गर्न चतुर्दशी आज अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुःख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, जय गाडे सा जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, यो लोक दुःख छोडी जन्म सुधारौं है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव। हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन, छोडेर नजाऊ होइ रुन्छन् मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन,

जपौ हरिलाई कृष्ण जपौ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई।